0: का हुई कमल आई ने भूख खाई बाटो
1: एरी ने काका आई फूला टूरे बारी में गई रही सबो काट दे दी बीस निकाल देवी की कह के लेके आये बाटो
0: सबको कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाए सब पकटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल रहूँ तर
0: कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपू ना समय लागे के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश झट बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खर जैन जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करे लबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहर पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेथा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
5: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम का लागि तपसिल अनुसारको जनशक्ति आवश्यक परेकाले इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ
4: जनशक्तिका विवरणहरू
5: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना पूर्णकालीन योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण रेडियो प्रविधिको बारेमा अनुभव र ज्ञान भएको
4: पत्रकार संख्या एकजना थारूभाषी पूर्णकालीन योग्यता कम्तीमा स्नातक रेडियो समाचार लेखन कार्यक्रम उत्पादन सी भएको र जियोग्राफी जानेको
5: सहायक प्राविधिक संख्या एकजना आंशिक योग्यता कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण अडियो भिडियो सम्पादन सिप भएको
4: बजार प्रतिनिधि संख्या एकजना आंशिक योग्यता लेखा बजार शास्त्र विषय लिई कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको स्नातकलाई ग्राह्यता
5: समाचारदाता संख्या एकजना स्ट्रिङ्गर अल्पसंख्यक थारू दलितलाई प्राथमिकता योग्यता एसएलसी वा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको पत्रकारिताको अध्ययन वा अनुभवी
4: पारिश्रमिक संस्थाको नियमानुसार हुनेछ इच्छुक उम्मेद्वारले साउन 15 गते सम्म आफ्नो व्यक्तिगत विवरण शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नागरिकताको प्रमाण पत्र र तालिम अनुभवका प्रमाण पत्र सहित सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा निवेदन पेश गर्नुहोला थप जानकारी चाहिएमा फोन नम्बर 9811363633 सम्पर्क गर्नुहोला
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 ले तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
0: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
0: बैंकको सकल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
0: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कही था, कब्बू पेंसिल हेरा कही था, कब्बू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: एघार प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
2: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया,
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा,
2: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा,
1: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा,
2: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
1: दन्त रोग सेवा,
2: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा,
1: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
3: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार,
1: र सिटी स्क्यान सेवा,
2: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा,
1: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पारासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पताल का अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
2: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा,
1: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
2: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
1: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
2: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
1: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
2: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषा के खोज खबर स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उपरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र नेपाली पात्र में फिर सुनती हलवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कर्णाली हृदय जोखिम बढ़ेटी कर्णाली के जोखिम घटना कानून संशोधन आवश्यक खुलक जनप्रतिनिधि कौन के कहा देशभर मनसून के प्रभाव जारी कुछ ठाव में भारी वर्षा के संभावना रलक सतर्कता अपना मौसमविद नागरिक सलाह धनकुटा में ट्रक दुर्घटना पार्छ आग लगी हुलक चालक की मृत्यु संसदीय सुनवाई समिति के बैठक बैठी जल तथा नदी जन्य स्रोत उपयोग करके आर्थिक लाभ प्रेरण सेकना संभावना हुए सफे कर्णाली नदिया जोखिम दुख हुईलकटी जनप्रतिनिधि चिंता जन कर्णाली नदिया कैलाली तर्फ के टीकापुर नगरपालिका जानकी गांवपालिका और बर्दिया तर्फ के राजापुर नगरपालिका और गिरुआ गांवपालिका में वर्षेनी कटान डुबानो बगान करती रहलवा लदिया बीच में टापू बल्लक लदिया के धार परिवर्तन करके किनार में कटानी हुईना कर्णाली के सबको पानी पश्चिम बंगाल मकेली बहना बर्दिया तर्फ लदिया जन्य पदार्थ थुप्रो पानी के प्रभाव नई पानी अभाव फुटी रहलवा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी कर्णाली लद्दिया खेतो में सिंचाई निर्माण के लाख ढुंगा गिट्टी बालू मिलके फे दुख और तनाव फूले से फे वहां उतरह दिलक बुटलो बाट वहां लद्दिया की कटान रुकना कैलाली तर्फ राष्ट्रीय गौरव के रानी जमराकुलर सिंचाई आयोजना बर्दिया तर्फ राजापुर सिंचाई आयोजना काम करती रहलवाट आयोजना के इंजीनियर नीलम थापा बुटिलो बाट वन अधिकृत जनक उपाध्याय वर्तमान कानून निकुंज क्षेत्र वन क्षेत्र कोनफे छूर नई पैना तर चोरी तस्करी हुटी रहलक अवस्था अलग बटिलो बाट लद्दिया के बीचमा टापू बनलक लद्दिया किनार में धकिल्टी रहल कारण आजकल कर्णाली लद्दिया टीकापुर नगरपालिका साथ स्थित सत्य कर्णाली सामुदायिक बनुआ क्षेत्र में हो वड़ा नंबर 5 स्थित भैरवनाथ सामुदायिक बनुआ क्षेत्र में कटान करती रहलवा बनुआ कटान भर्ती गई पाछ बढ़िया बस्ती में पैसना खतरा कर्णाली के बढ़िया बेला बेला में बस्ती में पैसना नहर बगैना कला करण के स्थिति हुई कर्दैत रानी जमरा कोलर सिंचाई आयोजना के सूचना अधिकारी तथा सीनियर डिवीजन इंजीनियर रामकृष्ण घोरासैनी भैरवनाथ बनुआ क्षेत्र में हुटी लद्दिया कटान रोकना 2 करोड़ रूपया खर्च न लगलक लम्कीचुहा नगरपालिका के ढुंगा प्रमाणित नई कलक ढिला हुलक बोटिलोट संवाद समूह के पहल में दुनू प्रदेश के मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक सुझाव समिति गठन कर रहे 2081 पुस्तीन गते गठन हुलक समिति 2081 माघ 23 अध्ययन प्रतिवेदन बनाके बनुआ ओ निकुंज विभाग में पुगलवा समिति कर्णाली लद्दिया के पानी गिरुआ ओ कर्णाली में आधारा बढ़ना बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के 9 ठाव थुप्रलक ढुंगा गिटी उत्खनन करपन्ना रानी जमरा मोहन से तरम उत्खनन बंद करना बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज के लद्दिया निमाली संशोधन करपन्ना कर्णाली लद्दिया के एकीकृत तटीय व्यवस्थापन योजना बनैना कार्यान्वयन करना सुझाव दिलाबाट सरकार परिवर्तन जेन्जी आन्दोलन निर्वाचन के कारण प्रतिवेदन के सुझाव अनुसार राष्ट्रीय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 निमाली 2029 बनुवा ऐन 2076 निमाली 2079 मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निमाली हं विपद मैत्री बनेना काम शुरू हुन सकल नै हो अध्ययन समिति की रहलक जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी लद्याजन ने पदार्थ के डर रेट प्रदेश हटो के रोयल्टी लेना क्षति पालिका हम बेहोना काम कल कठिनाई हुईलक संघ के मुक्ता का पन्ना जोखिम घटना चुनौती हुलक बोटिलो बाट छलफल में सहभागी प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल गेवाली वर्तमान सरकार नागरिक अप्ठ्यारो संशोधन करना अलग अलग बोटिलो बाटी कर्णाली लद्दिया के जोखिम घटना लद्दिया उपभोग संरचन व्यवस्थापन करना कानून संशोधन हुलक सहस विपन्ना संवाद समूह के सहजकर्ता सुशील बस्नेत के कहा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव लगवा मनसून की निम्न चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास में अवस्थित बा ओहो कारण देश मध्य दक्षिण वर्षा हुटी रहवा पाछक 24 घंटा में मध्य के दौलतपुर में 69.4 मिलीमीटर वर्षा हुए से फे राजापुर में 35 मिलीमीटर वर्षा मापन हुआ असक कैलाली में मोहलियामा 25.6 मिलिमिटर, रोटीके गैरामा 14.4 मिलिमिटर वर्षामा पहिलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनेवा। पाछा 24 घण्टामा सबसे बढ़ी वर्षा सुनसरीके सतारामा 90.4 मिलिमिटरमा पहिल वर्षा। देशभर एकनास्के नै हुलक, कोनो ठाउँमा भारी मध्यम सामान्य तरिका हुटिरहल। मौसमविद बोटिलवा आगामी 3 दिन हफे वर्षा हुनाउ ओफे एकनास्के नै हुना। मौसमविद डेभिड ढकाल बोटिलबाट मनसून जारी रहलक, देशके धेरै ठाउँमा पानी पर्न क्रममा जारी रहलक। वर्षा हुई सचेत हुन बैठन नागरिक मौसमविद ढकाल आग्रह समेत कलबाट। खोजखबरमा एकरी विश्राम विश्राम पासा फेर एबिसिनतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको व्यवहार सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू, व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू,
2: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ,
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इङ्लिस, नेपाली, हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए, ऐच्छिक विषयहरू इङ्लिस, डेभलपमेन्ट स्टडिज, सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स,
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे, कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर

0: लमजुङकै मध्य नेपाल नगरपालिका सार भाट बेसीमा पहिरो जाके धनसार भत्कलक डाई छाएके मृत्यु हुलबा पहिरोमा पर्के थप दुईजना घाइते हुलबाट मृत्यु हुनमा मर्स्याङदी गाउँपालिका एक नायु घर हुला काल मध्य नेपाल नगरपालिका सार बटिएलक 19 वर्षीय टिक बहादुर विका उहाँके कान्छी छाए 15 वर्षीय विनिता विकर हलबाट पहिरोमा गएलक गम्भीर घाइते हुलक टिक बहादुर विनिता के पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरमा उपचारके क्रम मंगलबार बिहानके 5 बजे हर मृत्यु हुलक जिल्ला प्रहरी कार्य लमजुङकै सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बहादुर छेत्री जानकारी दिनबाट धनसार पुर्लक घाइते हुलक टिक बहादुरकै श्रीमती 50 वर्षीय सुकमाया विकौ उहाँके बर्की 16 वर्षीय अस्मिता विकस पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरमा उपचार हुटिरहल उहाँ बोटिलबाट उहाँके अनुसार उहाँकै अवस्था मध्यम रहबा मंगलबार बिहानकै करिब 2 बजे जति खुलासे भाट बेसी ललक कुलुवा भत्कलक स्थानीय विशु दत्त सुविधेके 2 ठोट भन्सार भत्कल र भन्सार भत्कल खबर पैलकसँग इलाका प्रहरी कार्यालय भोल्टेयर मसे प्रहरी निरीक्षक ध्रुव प्रसाद शर्माके नेतृत्वमा 11 जनाकी प्रहरी टोली उद्धारमा खटला रही स्थानीय प्रहरी मिलके घाइतेके उद्धार गरे घाइतेके 4 जना उपचार केला पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पठेलक 2 जना चिकित्सक मृत घोषणा कलक प्रहरी जनैलबा खोज खबरमा फेरि विश्राम सम्पाचा फेरि विश्वन्तिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना
2: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
1: तपसिल
2: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी
1: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी
2: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
1: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
2: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
1: थप जानकारीका जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
2: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
3: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08
5: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त
6: मैनै जाइ उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घरसे बाहर नै निकर्छु
5: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर यी पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला सम्बन्धी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डाक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
6: ए हो दादो अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
7: याद करबी मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाग खुजली भुटला झरना
8: कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
0: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। तमर करिडोर सड़क खण्ड अन्तर्गत धनकुटाके चौबीसे गाउँपालिका चार फलामेटामा सड़क दुर्घटना पछा आग लागि हुलक चालक के जर्की मृत्यु हुँदा सोमबार रातकै विराटनगर तापलेजुङतर्फ जैठी कलक प्रदेश 102001-5363 नम्बरकै ट्रक गरिब 8 बजे हुँर ब्रेक फेल हुई सड़कमा पल्टल पाछा आग लागि हुलक प्रहरी जनेलवा। दुर्घटनामा ट्रक चालक भोजपुरकै 30 वर्षीय विशाल राईकी घटनास्थलमा मृत्यु हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा जनेलवा। ट्रकमा सवार सहचालक 13 ठुम्के म्याङलुङ नगरपालिका 9 की 18 वर्षीय सञ्जीव सुंगौला फे कुशल रलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाकै प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी नारायण रंजित कार जानकारी देलबाट घटनाकै जानकारी पाइलगत प्रहरी चौकी फलामेटामा से खटलाक टोली नेपाल प्रहरी हो स्थानीय के सहयोगमा गरिब 1 घण्टा पाछा आग नियन्त्रणमा लिलक प्रहरी जनिलबा। समाचार संघ खोज खबर वाले जनासे पहले खबर के मुख्य शीर्षक फेर से एक चोट कर्णाली दिया जोखिम बढ़ाई थी कर्णाली के जोखिम घटेना कानून संशोधन आवश्यक हुलक जनप्रतिनिधि के कहे। देशभर मनसून के प्रभाव जारी कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना लग सतर्कता अपना मौसम भी नागरिक का आग्रह। धनकुटा ट्रक दुर्घटना पाछा आग लागी हुलक चालक की मृत्यु संसदीय चुनाव समिति के बैठक बैठी। रीता बुकला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती आबुकला खोज खबर से मिस्टा चौधरी विदा हिटू एक पाछा 12 बजे की खोज खबर सुन सकी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा सुनती रवि।

0: रजनी वहाँ बासठ नंबर लच्छी बात लिखाओ तो लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जाला मैं काकर लच्छी खा देती अपना
0: एक तो तपा का मुर्गी में खा रखे लच्छी से जुड़े से बक्सा की आनो हारी छत्ता
1: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस आकर बेन घर भीतर आई लागी कलचे भगेदी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खोज रखो का
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुंह साफ सीधे नीचे आकर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना न दाठी दूर रीना
0: हो बिना तो क्या करना हो तप्पा देखती की डर नागा लगना रही था देव तप्पा तो अपन घूम का बारी वोट कर गिरता
1: हमारे के सापन से डरे ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई रहती पति रक्षा करत लाग वह अपन बचाव करत लाग साम दस न कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देखा डरे था नी चलाख दूर रहल से साप नी डस्ट तर मुखर खैना खाज बाहर निस्कृत में नाम घास काट बेर छाल बेर ड्यांग बेर छुबे से मन मही मारकवार बाट कना सबस्क पट्टी रक्षा करना क्रम में साप दस लाख रह मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी को करबे फिर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सक्दै छ
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गुवाज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
6: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
5: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन लबाटी
6: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
5: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864241208 और 9846239161

0: उपाय नै बाँधेबी, सड़क किनारमे मल वस्तु नै कुरा देबी, साथै सड़क किनारमा पशु चौपाय बाँधके ढुङ्गा बालुवा गिट्टी मल कुराके दुर्घटना हुइले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा लेह पर्न बा।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
5: तपाईं एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
4: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
5: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
4: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
6: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या, यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सनमा।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: पंछी पालन व्यवसाय का लागि जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछी में लागने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो विगत 3 महीना देखि देश का विभिन्न स्थान में यह रोग देखा परि रहेको छ पशु सेवा विभाग सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रण का प्रयासहरू भइरहेका छन् तसर्थ पंछी पालक कृषक व्यवसायीहरूले रोग को संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं रानी जमरा कुलरिया सिटिङ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग।

0: हुक्का पी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रम
4: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
3: प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
4: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
3: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
4: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
3: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
4: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने
3: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
4: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
3: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
3: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
4: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
3: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे जो तू ही वहाँ पठाई दो, यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: ए सन्टेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगरिकन पन भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन माथि गयो।
0: यतिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
3: आओ आओ, तू टॉयलेट सही नाम तो ढील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
4: कुछ नहीं हुई सर, टॉयलेट के 15 सफर रख लू, सर लग के घूम रहे हूँ, जैसे चेयर सर लग में तो हलचल नहीं कर, मोल सब होगा के खा पाई ना तो टॉयलेट जाके
3: मोल सब को ना चलेना तो नहीं चले लो ना
4: नहीं चले ना सर
3: विद्यार्थी भैया बापू मुखरा मुरा से कह रो मोल सब पर डेब कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सब मूल से फिर वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाथ ले पकड़ा नहीं भी
4: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
3: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत पकवा मुला कुछ देर पास आसम के सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी गेंद तो इतना मल अच्छी ले चला का मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना सीखी था
5: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार्गी सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा की सपवा दस सिठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञ अंकन से संपर्क करी
6: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइला आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिठा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संसद 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी कन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मैलाप साम्रो पात्र और नेपाली पात्र वफी सुन्टी रहलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से बाल बालिका के समस्या में प्रबंधन के लागि टीकापुर में छलफल। बाल बालिका के संबंधी छरी रहल कानून संशोधन एकीकृत करना बनाईपन में जोड़। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर द्वारा 40 स्थान राजधानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल मान श्रेष्ठ के निधन। विदेश में रलक नेपाली है मतदान के लाग मोडेल प्रस्ताव।

0: पूरा खबर। बाल बालिका के अधिकार के सम्मान संरक्षण प्रबंधन व परिपूर्ति के लाग बनलक कानून एकीकृत होना आवश्यक रहलक। जोर दिलबाट ओल्ड भिजन इंटरनेशनल नेपाल के सहयोग तथा बाल कल्याण संघ की आयोजना में छलफल हुआ। छुट्टा छुट्टी रहलक कानून एकीकृत हुईलक कानून बुझना व कार्यान्वयन करना सजिलो होना। दोहरो बाछना व्यवस्था कम होना। बाल बालिका के अधिकार व संरक्षण की व्यवस्था एक ठो ठाउँ में पैनाओ। सेवा प्रभाव थप प्रभावकारी होना हुईलक एकीकृत रूप में निर्माण करना पड़ना में जनप्रतिनिधि सरकारवाला सकुदान साझा बुझेना हुईलक। कार्यक्रम के सहजकर्ता तथा बाल कल्याण संघ के कार्यक्रम अधिकृत राधिका गिरी बोटिलोवाटी कार्यपालिका सदस्य मंजू बिक पालिका के बनेलक ऐन तथा कार्यविधि बारे समुदाय स्तरमा फिर जानकारी देना आवश्यक अलग बोटैटी टोल विकास संस्था आमा समूह तथा थ्योरेसिन बैठक मार्फत समुदायसम्म पालिका म बाल बालिका के सम्बन्धी हुलक नीति कानून बारे जानकारी दे पन्ना बोटिलोवाटी टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य अधिकृत कमल बहादुर रावल बाल संरक्षण पोषण लगायत के क्षेत्र में प्राथमिकता में देखे पालिका के काम करती रहल बोटैटी स्वास्थ्य शाखा के फेर पोषण प्राथमिकता में देखे वर्ष में दुई चौपल पोषण लेखाजोखा करना कलक बोटिलोट वहां बाल बालिका के सकुझान सरकार के विषय महिलक अभिभावक विद्यालय समुदाय सकुझान चनाखोपना व जनचेतना फैलाइपना बोटिलोट महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह पालिका के अपना हो संघ संस्था उनके सहयोग में बाल संरक्षण में सघैना उद्देश्य कार्यविधि ढेर निर्माण हुई सेफे बाल बालिका संघ संबंधित कानून एकीकृत रूप में हुईलक सहज हुई के महसूस हुईलक एकीकृत कार्यविधि निर्माण के लाग संघ संस्था सहयोग लेना बोटिलोट होस्टनगर के सोमवार टीकापुर के वड़ा नंबर 8 वड़ा भेला में संकलित योजना बाल बालिका के समस्या बारे समीक्षा हुआ। वड़ा नंबर 6, 7, 8, 9 के जनप्रतिनिधि हो बाल बालिका के सहभागी रलक कार्यक्रम में बाल बालिका के वड़ा भेला में पेश कलक योजना व समस्या कार्यान्वयन के अवस्था बारे में चाशो धरलबाट बाल बालिका के वड़ा भेला में बाल विवाह न्यूनीकरण खेलकूद क्षेत्र के विकास लागू औसत दुर्व्यसन न्यूनीकरण के लाग सचेतना जगाईपना रूपांतरण कक्षा 9 वड़ा में संचालन करपना बाल क्लब के सक्रियता बढ़ाईपना लगायत माग थल रही। बाल बालिका के अभिभावक सचेतना करना खाले कार्यक्रम करपना माग कलबाट सकारात्मक अभिभावक अभिभावकों बारे बाल बालिका व अभिभावक संघ धरके छलफल चलाईपना बाल बालिका के माग थलबाट कार्यक्रम जनप्रतिनिधि बाल विवाह न्यूनीकरण बाल बालिका के लागू औसत जोगेना वड़ा स्तरीय वड़ा कफ प्रतियोगिता नियमित रूप में संचालन करना कलक 9 वड़ा में रूपांतरण कक्षा संचालन के लाग बजेट की व्यवस्था हुलक बाल क्लब गठन व पुनर्गठन में प्राथमिकता दिलक बोटिलोट। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक सेवा मार्फत 40 राहदानी वितरण कलबा इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के हुलाक सेवा मार्फत राहदानी वितरण शुरू कल करीब 2 महीना के अवधि में 40 राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण कल जानकारी दिलबाट इलाका के हुलाक कार्यालय टीकापुर संघ के समन्वय सहकारी मकलक जेठ 20 गते राहदानी हुलाकी सेवा मार्फत वितरण शुरू करगिलबा जेठ 20 गते साउन 12 गते समय इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर हुलाक सेवा मार्फत 40 राहदानी वितरण कर्फ्याकलक इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के राहदानी शाखा के कम्प्यूटर अपरेटर अनिल डगौरा जानकारी दिलबाट इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर में राहदानी बढ़ेक लाग फान भर्ना क्रम में सेवाग्राही राहदानी घर में पुगे कार्यालय में अलसे लेना केना विषय खुलाइपना हो अनुसार कार्यालय के व्यवस्था करना कलक कम्प्यूटर अपरेटर डंगोरा बुटिलोट नेपाल सरकार 2082 साल चैत 13 गते बैठक मंत्रीपरिषद बैठक में स्वीकृत शासकीय सुधार संबंधी कार्यसूची के बुदा नंबर 27 मशीन व्यवस्था कलबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन करना क्रम में राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण कर्ती ऐटी हल एकर इलाका प्रशासन कार्यालय के कार्यक्षेत्र भित्र के सेवाग्राह्य राहत पुग्ना पछिया कलक इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के प्रमुख तारानाथ पनि रोकेका हिबा राहदानी घर में पुग्ल खुला खतिर पन्ना पैसा फे इलाका प्रशासन कार्यालय तीति अलसे फे राहदानी बाहेक निशुल्क घर में राहदानी पैना कलबाट खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पास फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ।
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीएका लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएसका लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षाशास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इङ्ग्लिस, डेभलपमेन्ट स्टडिज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
0: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौ, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाउ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाउ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर, कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछ फेरसे स्वागत बा। नेपाली कांग्रेसकी वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठ के निधन हुँदा मंगलबार दिनकी ललितपुर स्थित एक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ के निधन हुलक। नेपाली कांग्रेसकी महामन्त्री गुरू घिमिरे जानकारी दिलबाट पार्टीकी कार्यवाहक सभापति, उपसभापति लगायत धेरू सिंह भूमिका रलक कलक योगदान कलक श्रेष्ठ क्यान्सर पीड़ित रहे। उहाँ विगत 15 दिनसे ललितपुरके जालबाखेल स्थित हिलियस अस्पतालकी आईसीयूमा उपचार रहे। श्रेष्ठकी पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि केला बुधवार बिहानकै सानिपाया स्थित नेपाली कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा कर्णालबाट कांग्रेस उपसभापति विश्व प्रकाश शर्माकै अनुसार वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ 2083 वर्षकी उमेरमा निधन हुँदा उपसभापति शर्मा उहाँकै निधन लगत्त बुधबार बिहान केन्द्रीय समिति बैठक बोलिरहेको जानकारी दिनबाट बैठकको शोक प्रस्ताव प्राय पारित गर्नुभएको छ। अन्तिम श्रद्धांजलि देती शव यात्रा सहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्ट गर्न भिलबाट सुर्खेतको लेगबेसी नगरपालिका स्थित हलकान्दाराके उपजीव अनियन्त्रित धोके दुर्घटना हुलक 12 जना घाइते हुनबाट घाइते मध्ये लेगबेसी नगरपालिका 6 के 22 वर्षीय सुषमा कार्की, उहोठाउँकी 26 वर्षीय तिलसरा सिरिस, 70 वर्षीय अमृता कार्की, 70 वर्षीय खगीसरा विक अवस्थामा गम्भीरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत जनिलवा। घाइते हुकुनकी जिल्ला सदरमुका वीरेन्द्रनगर स्थित माया नर्सिङ होममा उपचार हुटिरहेवा। प्रहरी के अनुसार आज मंगलबार दिनके लेगबेसी नगरपालिकाके नाडा गाउँ से दशरथपुर तर्फ आइटिकल VA1540 नम्बर के यात्रुवाहक मुस्ताङ जीप पालिका के वडा नम्बर 5 हो 6 के बीचमा पर्न हलकन्दारा के उपर आफ्नो अनियन्त्रित धोके सड़कमा उपल्टल, चालक सहित 12 जना घाइते हुनबाट अन्य घाइते मध्ये 4 जना के अवस्था मध्यम, 4 जना के अवस्था सामान्य रहल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी एवं प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी कविन्द्र सिंह बोहरा जानकारी दिलबाट दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान हुटिरह प्रहरी जनिलवा। संघीय संसदको संसदीय चुनाव समिति समक्ष प्रस्तावित दुनु निर्वाचन आयुक्तकी आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुतिकै क्रम शुरू हुनुभयो। समितिकै आज बैठकमा प्रस्तावित आयुक्तको गुरूप्रसाद वग्ले, ओखलढुङ्गा डाक्टर राजीव सुब्बा काठमाडौँकी सुनवाईके कार्यसूचीमा धलरे प्रस्तावित आयुक्तबारे उजुरीकै प्रक्रिया पूरा हुल्फा छ। उहाँको कार्ययोजना प्रस्तुतको लक्ष्यमय दलबाट बैठकमा समितिकै सदस्यको लागि जिज्ञासाबारे प्रस्तावित आयुक्त वगले स्पष्ट पर्लरहे। प्रस्तावित डाक्टर सुब्बाके सुनवाईको समय पाछा शुरू हुनेवा। सांसदको निर्वाचन प्रणाली थप पारदर्शी व्यवस्थित विश्वसनीय मितव्ययो निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कसरी गर्नका कि विद्यमान निर्वाचन कानूनमा विपना संशोधन विदेश मरलक मतदाता कि मतदान के विषयमा प्रश्न सहित प्रतिबद्धतामा कलरही सभापति बोधनारायण श्रेष्ठकी नतिजामा आधारित कार्य योजना पेश गर्न निर्देशन दिलबाट संवैधानिक परिषदकी गत असार 19 गतेकी बैठक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मान बहादुर कार्की सहित आयुक्तमा वाग्लेव डाक्टर सुब्बाके नाम सिफारिश गर्न निर्णय कलरही। प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्की के सुनवाई बुधबार हुनेवा।

कानून संशोधन हो कि कृतकर्णा बनाए पर्नामा जोर। जिल्लाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरद्वारा 40 थान राहदानी हुलाक सेवा मार्फत वितरण। कांग्रेसकी वरिष्ठ नेता गोपाल मान श्रेष्ठकी निधन। विदेश मलक नेपाली हम मतदान के लाख मोडेल प्रस्ताव। लिटा बुकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई धन्यवाद दिटी अब अगला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदा हेतु एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सीघ्री सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रही।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फलैती की दौड़ती आ गई है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोंदे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटल अपना न हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई बाटी का तर फिर पार्टी तो डाल ना अपना न
2: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आपूम ना हो
0: ना ते भौजी हमारा बाटी अपना न कुछ नहीं हुई बिन गुआर हना जिन चले गई वो नरेश दादू एम्बुलेंस ना समय लागे छे था लगल के मोटरसाइकिल बाकल छे उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरल से उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
1: ई बेला का खाना जात थे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम बेरेमेन कुछ थे खवाई हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगन स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल फरफर करा दी बेरम्या अपेले से झन समस्या बिना हुए कोशित बेरम्या न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सब पकड़ लग ठाउं से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर ना थे कठा असी कर से लगत संसार में समस्या हुई सकता यही ले करबेल सपवा दस लग शरीर का भाग काट खा फाक को नावस्था थे आई सिखा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता में एक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या।
0: त्यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नै निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
7: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
8: हामी छोरी मान्छेको त भाग्य नै खोटो हुने रहेछ
9: सर। भाग्य खोटो लिएर कोही पनि जन्मे भन्ने नै गाउँछ नि, भाग्य त आफैले बनाउनु पर्छ।
8: कसरी सर, मैले त मेरो भाग्य बढाउनै सकिनँ।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्दन का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेल बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26
3: दाजू हेर्नुस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराख्या छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि दुरु दुरु
4: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
4: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
5: सत्कार मेडिकल सेवा का खास सेवाहरू ओपीडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात प्रयोगशाला सेवा ईसीजी सेवा मेडिकल सेवा ईएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 091-560-095 मोबाइल नम्बर 98-484-27-359

0: काफी कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मिर्जापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: नाता छ वा सापन कुछु नि कराइ छम साप कुछु नि करत ल्या उ अपने चल गेल त कुछु कराइल त ओ सक्कु साथ बिखा थे नि रत
3: बिखा हो कि नि हो क कति कति नाता दाई
4: ल्या नेपालमा पाजिना बिखा सापन क विषय म सुन एक थोरा ठ गरैचा जोन खास कै ख रातिक समय म घर भित्र पैठ सेक्ठ ई कटला से निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ डे भाग जो निचलना कै ख सास फ्यार जो निसेकना मे से लक्को होई सेक्ठ और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेरी रठ निकर फाट फुले ठ डोम साप दिन वा रात दुनु म देख पर्ना ओ खास कै ख संजा बिहान देख पर्छ निकर कटला से फे लक्को होई सेक्ठ ओ और रठ कैली जाटक साप निकर कटला कला से कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकट थे पाटी होकर रकट बहना हुई से था उसे कह हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकारना बाधे सा ई साप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रखा।
5: बर्खा छाको अनाज बिक्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा जसाईका घटना ढिउर बिना कथा बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बछारा नाश विदेश सापनका जसाईका घटना ढिउर बिना कर लगपा जाए
6: झुर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रह उहो फे यदि सपवा 10 डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जाँदै पर
7: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैछ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै छ।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं

0: परीक्षित यही प्रकार बाट यहाँ मैले प्रमाण गरे अब बाकी अंश को लगी अब वसुदेव जी तिनी नारायण कृष्ण तपाई का सुपुत्र हुनुहुन्छ भनेर भगवान को महिमा वसुदेव ने बताने भो निमी राजा का नौ भाई योगी पनी यहाँ बट विदा हुनु अब उद्धव र भगवान कृष्ण को संवाद पट्टी को ध्यान आकर्षण कराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मान को कथा यस अध्यायबाट
1: जय बोलो श्रीमान रावण महापुराण को
0: सुन्नु भो महाराज परीक्षित अब उद्धव लाई भगवान परमात्मा परमेश्वर बाट आज्ञा गरी बक्छु लौ त मेरो बाबु उद्धव भनेर मेरो नारायण उद्धव जी परमात्मा परमेश्वर वैकुंठ धाम सवारी होना आटी बक्सो तर उद्धव जी वैकुंठ धाम सवारी होना लगता खेल अत्यंत समवेदनशील रूप बाट रुदे रुदे उद्धव ने प्रभु का दुई पाउ समातेर बिन्ती गर्नु भो भगवान हजुर कोसँग कता हो अर्कैसँग कुरा गरे जस्तो बुझिया यसो छाण बुद्ध हजुर को भावना मैले अन्तै बुझिया छु मेरो ईश्वर कता कता चलासल उसको कुरा अंत करे जो बुझिया इस कारण मेरे भगवान मैं बुझी मैं चिन्न सकिन क्षमा राखी बोसो ईश्वर आज हजुरसंग मैं 125 वर्ष को पूर्ण आयु भो मैं कहाँ जाने ईश्वर माथि हजुर क्षमा राखी बोसोस् भन्दा बाबू उद्धव मैं परमधाम जाने बेला भो